जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी त्याई।

सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणे। आओ थोड़ा अपनी असलियत वाल नजर मारिए। मैं एक सवाल उठाना हां, असी सारे जितने इत्थे ग्रिस्ती बैठे हां, कि साड़ी जिंदगी की टॉप

बहुत गरीब सी, अनपढ़ भी, गावां मझां चरांदा है। भगत धरनी बारे भाई गुरदास जी ने अपनी वार विच इस तरह बयान किया है कि जदों इंसान सच्चे मनो उस परमेश्वर की भगति करता है, उहदा नाम लैंदा है, तां उह परमेश्वर किस तरह आके मिलता है, जिवें धन्ने नूं मिलिया। भाई गुरदास जी इस तरह बयान करते हैं।

ना ठाकुर रोटी खांदा है ते ना तन्ने ने रोटी खादी। अगला दिन भी लंघ गया, रात पै गई, ओ भी लंघ गई, तीसरा दिन चढ़ गया,

तीन दिन हो गए नी अरदासा करदे आं, हाथ जोड़दे आं, तू नहीं आया। जे तेरी जिद है पढ़िया लिखिया दे हथों पंडतां दे हथों खाना, ते मेरी भी फिर जिद है, मैं भी जट आ, इत्थे रख के अपने हथां नाल तैनू रोटी खवानी। याद रख जे तू रोटी नहीं खानी ते मैं भी नहीं खानी, पानी नहीं पीना ऐ ठाकुर, जद तक तू रोटी नहीं खाएगा।

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब किन्ने रब देखे उन्नू पुछो भाई तू इस लायक है कि तू रब नू देख सके जे देखना है उस नू ते भगत धन्ने वर्गा अपना मन बना लो। कदी क्या किसे ने ऐ ठाकुर ऐ सतगुरु ऐ रोटी पई जद तक तू नहीं खावेगा असी नहीं खाने। जद कदी क्या नहीं ओनू मिलन की कोशिश नहीं की ते सानू ओ रब ओ सतगुरु किस तरह मिलेगा। ऐ तन्ना बैठा कहन लगा ठाकुर फैसला कर लिया है जे तू नहीं खानी ते मैं भी रोटी नहीं खानी। जद मन विच ए धार लिया ता उस परमेश्वर नू आना पिया परतख होके तन्ने दे सामने बैठ गए।

परमेश्वर मिलिया ते ओ तन्ना हुण तिन्ना लोकां दा ज्ञाता हो गया। ते ठाकुर कहन लगे, तन्या तू याद कीता मैं आ गया, हुण दस तैनू चाहीदा की है। उस वक्त तन्ने ने ये शब्द उचारिया।

संता मध्य गोबिंद आछ है, गोकल मध्य श्याम गो। अखीरलियां पंक्तियां बड़ियां कमाल दियां। संतां दे घर दे विच जाइए ते परमात्मा दा जाप, प्रभु दा जाप सुनदे, ते गोकल विच चले जाइए, द्वारका नगरी विच चले जाइए, मथुरा विच चले जाइए, ते कृष्ण दियां गल्लां, कृष्ण दियां बातां, गोकल मध्य है श्याम गो। ते नामदेव कहिंदा साडे हिरदे च पता कौन है? नामदेव कहिंदे साडे हिरदे च राम है, राम। संतां दे घर विच गोबिंद, गोकल अस्थान दे विच श्याम दी गल, कृष्ण दी गल, ते भगतां दे नाम, परमात्मा दे नाम जपण वालियां दे हिरदे विच राम परोता हुंदा। फरमान करदे कहिंदे ने

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है, सुल ही ते नारायण राख। समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन, हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन। इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है, उस नू भी शोध दा जाए उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए, जां सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी तां इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। एक शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कई

वो लभदे फिरदे कौन है जिसते पले है कौन है जो ब्याज रहा है कौन है जो कमा रहा है कौन है जो जप तप दे नाल इस वस्तु नु हथ करके मेहनत करके आ संसार दी वस्तु भी मेहनत करके प्राप्त होंदी सिर मार के लभदी संसार दा पदार्थ जो है बंदे नु मेहनत कीते बिना नहीं लभदा कोई दिमागी मेहनत कर लैंदा कोई शरीरक मेहनत कर लैंदा ते धर्म दे बारे जे कोई भुलेखा लैके बैठा भी बिना कीते मेरे धर्मी होण दी गल बन जाएगी नहीं बन मेहनत करनी पए संसारियों का कई दिमाग चलता कई हाथ चलते लेकिन धर्म में दोवे चलने सुरत भी चलेगी शरीर भी चलेगा जे दोवे नहीं चलने तो धर्म अधूरा रह जाएगा शरीर भी चलना है ते मन भी चलना है जिसले मन ते शरीर दोवे चलते ने मनुख के अंदर धर्म फलना शुरू हो जाता जिन्हों लोगों को फलदा फुलदा धर्म है उन्होंने कोलो जांच लैण वास्ते प्रेम

मैं बंदा बेखरीद सखाए मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा वो मेरा जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा माणा में माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

जियो तुमरी कृपा ते तुझ पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तू बिन दूजा और न कोई था तेरा खेल अखड़ा जियो तू बिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब प्रभु जी पास सब कुछ कीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड्याई ता तेरी वड्याई

करबहिर तेरा प्रवक्ता, तू जन के है संग कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हर रंग जन का प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मतलब परवा चरण सरण हम अनाथ नाथ हरकन अपनी कृपा करे चल कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी

हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुखना जो तू दे सोई सुखना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

मध्यन होत साधु तुरे आवण जानू रहे पाई जल मरण के मिटे वसूरे गुर नारायण दुर गुर सच्चा दिन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण गाओ सा सुपाई मन तिंदे।